0: इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच भी तुहाडी सेवा विच।
2: तीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
3: ससिकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक देखण जरूर आयो।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, होने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: फुल कहारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
3: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
4: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
5: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
6: Yeah, here we go again. Authentic, original and better than our

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: भाने जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाहर हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, होने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: सतिकाल में है जी शेरगिल से, सुन रहे हैं और रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
5: तू तो यार होने ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
6: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
7: इस 8 मई नू सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
8: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
4: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
5: देखो हो गया।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: Jawakka di acting hai kamal, pavega hun tamal.
5: लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: जब चाहे

नहीं कर सकते। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी थोड़ी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हितर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: ¿Me le dijiste así como qué?
1: Hola, Kio. ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਾਣਾ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਹੋਊਗਾ।
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
1: ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਗੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਈ ਹੈ
0: ਇਹ? ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 7-8, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 2008 ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ।
1: ਨਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਲਮ ਚੋਂ, ਗੁੱਡ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚੋਂ।
0: अपन मतलब मैं देखो पता नहीं ये कोट पहन के मतलब देखो अप, वो मराठी वाली आ गई अपन अपन बात करेगा आज।
1: तो ही हाँ, तो ही कोट पा के आए, तो ही मच्छी वाली साड़ी थोड़ी पा के आए।
0: मैं वो बंबई का टच आ जाता
1: है। 2008 प्रोग्राम भी ना अपना, तो सारे सोचन दे भी किन्ने की करना, तो मैं सोचा मैं यश जी नु कहवा भाई यश जी टोकरी लेके ना मच्छियां फड़न वाली, ते ओ वाली पा के ते ओ ओ गाने ते ना परफॉर्मेंस हो जाए।
0: वल्लभ ने नकवा
1: पानी दीम दीम मोरा अब ना करना, क्योंकि ज्यादा साडा वा उसे गाने दा ब्याह इंडियन आइडल दे थ्रू जब डांस सिटीया डांस।
0: बिल्कुल, खैर वापस आते हैं। 2008 में आई थी ओए लक्की लक्की ओए, मतलब वन ऑफ द कह लो बेस्ट मूवीज। और अभय देओल ने क्या काम किया है, क्या काम किया है, बेहतरीन,
1: बहुत ही अच्छा,
0: एक नंबर। मतलब आज मैं एक नंबर,
1: अभय देओल ते नाल अपना दूजा हो गया मुंडा मंतेज।
0: हाँ वही तो बात है इस फिल्म की कि जो उसका चाइल्डिश है उससे भी आप कनेक्ट करते हो, जो उसका मतलब वो
1: देखो हाँ पहले जुड़े दे विच है, बाद चो कटिंग च है, बिल्कुल मूमा अंदरा डिफरेंट है, बट जेड़ा करैक्टर ही ना जो मुंडे ने छड्या आ ओ उन्ने फड़या आ, ओ चुलबलापन, ओ ही डायलॉग्स जदों ओदे प्यो दी दुकान ते जांदा ते कहंदा जी बर्थडे है।
0: हां नहीं वो सीन तो मेरा मतलब वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदा है। नहीं नहीं वो मतलब वो ग्रीटिंग कार्ड खरीदा है उस लड़की का नाम नानकी है ना।
1: कौन सा चाहिए,
0: कौन सा चाहिए,
1: मदर फादर वैलेंटाइन कुछ तो।
0: ये वाला कार्ड ये तो बीमार होने पे देते हैं, गेट वेल सून।
1: एंड वो होटल जी जाने उसके पैसे लगेंगे। नहीं वो वाला कोल्ड ड्रिंक पीना तो पैसे लगेंगे।
0: वो वाला सीन विशाल जी वो मतलब 2008 की पिक्चर है, 2026 में बैठे वो वाला सीन ना सच में मतलब सॉरी टू माय पार्टनर, लेकिन वो सीन आता है ना मुझे पता है वही फीलिंग आती है कि जैसे मन जाते हैं मैं वो नान की बैठी हूँ, क्योंकि ही इज लाइक सेम। अच्छा बटर चिकन ऑर्डर करना है। राइस तो लेंगे ना।
1: हाँ राइस तो
0: तू राइस खा। नहीं नहीं वो थोड़ा मैच्योर हो गया ना, राइस खाने तो ना खा। अच्छा उसमें बटर चिकन है, इसमें 5 पीस आते ये तो मतलब आज मैं मुझे लगता है ऐसे लड़के आज भी करते हैं क्या, कितने पीस आएंगे, 5 पीस आएंगे, वो सीन ना सीरियसली।
1: इवन गाने भी
0: पानी यहाँ पे फ्री है, पानी स्पेशली पंजाबी फैमिलियों वाले, क्योंकि पैसे जब भी घर वालों से मांगो, स्कूल के लिए कुछ चाहिए, कहीं घूमने जाना है नहीं हमारे पास, फिर कंगलों के घर पैदा हो गए।
1: जो गड्डी लेने जाना चाय जी वेरी वेल डन है ना, उस तो बाद मेनू फिर ओदी देव डी वेख के होर मजा आया सीगा।
0: यार मतलब वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनजोत ने उसमें काम किया ना, मुझे नहीं लगता आज तक भी वो मतलब बनाए फुकरे में आया अच्छे अच्छे रोल किए, लेकिन वो रोल ना दी बेस्ट मनजोत ने काम किया उसके अंदर। उसका नाम क्या होता है छोटे वाला, नहीं लक्की तो होता है। हाँ, हाँ, मैं नाम
1: लक्की बड़ा हो के भी लक्की बने।
0: आप बता रहे थे कि ये किस, ये रियलिटी बेस्ड है, वैसे तो मुझे पता है
1: जेड़ा चोर
0: का नाम
1: असली सीगा, उधर ना लक्की नहीं, उधर ना कुछ और सीगा,
0: बंटी चोर,
1: बंटी। हाँ हाँ। बंटी बबली भी बनी हाँ। पर वो इस ते नहीं सी,
0: वो भी बंटी बबली भी वन ऑफ द बेस्ट मूवी।
1: हाँ जी हाँ।
0: उसके बाद तो कितने बंटी बबली आए भी हैं मार्केट में जिन्होंने उसी स्टाइल में चोरियां करी,
1: बट हाँ इस हफ्ते दी साडी कल्ट क्लासिक सीगी, क्लासिक
0: ओए लकी
1: लकी ओए। ते जांदे जांदे इस फिल्म दा गाना सुनदे आं ते फिर वापस आउने ओनली ऑन रेडियो। हाँ जी, ते गीत आ तू राजा की राज दलारी।
0: हाँ
1: आ जाओ जी।

0: ਪਹਿਲੋ ਵੇਖਲੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭਣਾ ਉਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾ ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇ ਪਤਲੇ ਹਮਾਰੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
1: ਮਾਏ
0: ਜਾਤ ਹੈ ਸਖੀ ਸਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁੰਗ ਤੁੰਗ ਬਜੇ ਤੁੰਗ ਤੁੰਗ ਬਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ MTV ਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ।
1: ਹਾਂ ਕਿਆ ਥਾ ਉਸਕਾ ਸਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡ,
0: ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ
1: ਵਾਸ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ।
0: ਸੋ ਯਸ਼ੀ ਵਾਟ ਐਲਸ ਇਸ ਗੁੱਡ ਟੁਡੇ?
1: ਅਬ ਮੈਂ ਯਹੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਹਮ ਆਜ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ
0: ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ
1: ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਓ ਕੇ
0: ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
1: ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰਸ ਕੀ ਯਾ ਰਸਮੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਯਾ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰਥਾ ਯਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੋ ਹੈ ਘੂੰਘਟ।
0: ਘੂੰਘਟ
1: ਘੂੰਘਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਕੋ
0: ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ,
1: ਹਾਂ ਕੁੰਡ ਪੰਜਾਬੀ
0: ਕੱਟ ਲੈ ਪਤਲੀ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ।
1: ਅਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਭਈਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਘੂੰਘਟ ਕੀ ਆੜ ਮੇ ਦਿਲਬਰ ਕਾ।
0: ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਈਸ, ਇੱਕ ਘੂੰਘਟ ਵਾਲਾ, ਘੂੰਘਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਹਨ,
1: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ। ਤੋ ਘੂੰਘਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਘਟ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਓੜਨ ਵਾਰ ਓੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਵੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਚੈਨ।
0: ਅਰੇ ਓੜਨ ਵਾਲਾ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੇਚੈਨ,
1: ਬੇਚੈਨ
0: ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ
1: ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੂੰਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਚ ਖਾਈ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਗਮ ਚ ਬਈ ਜਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ
0: ਮਨ ਚ ਤੇ ਚਿੰਗਮ, ਵਾਹ ਉਹ ਪਾਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ।
1: ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 26 2026 ਵਾਲੀ
0: ਹੁਣ, ਪਰ ਘੜ
1: ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ
0: ਉੱਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ,
1: ਨਹੀਂ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਘੂੰਘਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਡੀ ਚੱਕ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਓੜਨ ਵਾਲਾ ਬੇਫਿਕਰ ਰਵੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੋ ਬੇਚੈਨ, ਦਿਖਣ ਮੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਆਬਰੂ ਆਬਰੂ ਕੀ ਲਾਜ, ਦਿਖਣ ਮੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਆਬਰੂ ਰੀ ਲਾਜ, ਆਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ।
0: ਨਾਈਸ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਘੂੰਘਟ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ।
1: ਹਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਂ ਆਜ ਵੀ ਰੋਇਲਸ ਹੋ ਯਾ ਨੀਚੇ ਤਬਕੇ ਕੇ ਯਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਐਵਰੀ ਵਨ
0: ਸਟਿਲ ਡੂ ਦੈਟ,
1: ਅਗਰ ਘੂੰਘਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਪੇ ਉਨਕੇ ਓੜਨੀ ਯਾ ਚੁੰਨੀ ਯਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਅੱਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਬ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂ ਯਾ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਯਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ, ਕਹੀਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਘੂੰਘਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਿਰ ਢਾਕਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਚਰ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ,
1: ਯੇ ਕਲਚਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ, ਘੂੰਘਟ ਕੋ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਘਟ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਘੂੰਘਟ ਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਅੱਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ।
0: ਇਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ?
1: ਐਗਜੈਕਟਲੀ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ
0: ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ,
1: ਹਾਂ ਹਮ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਜ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਕਿਤਨੀ ਖਾਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ੋ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ੋ ਮੇਂ ਮੁਗਲ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ
0: ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਆਏ ਥੇ ਤੋ
1: ਐਗਜੈਕਟਲੀ
0: ਵੀ ਆਏਂਗੇ,
1: ਗੈਸ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨਮੇਂ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਘੂੰਘਟ ਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ? ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਢਾਕਣਾ, ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਨਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਨਕੀ ਆਦਤ ਬਨ ਗਈ, ਆਦਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਨ ਗਈ, ਪ੍ਰਥਾ ਕਲਚਰ ਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਯੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ
0: ਅਗਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
1: ਹਾਂ ਆਤੀ ਹੂੰ, ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਦਤ ਉਨਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰ ਕਸਟਮ ਮੇਂ ਬਨ ਗਈ, ਔਰ ਯੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੋ ਜੋ ਸਿਰ ਢਾਕਣਾ ਯਾ ਛੁਪਾਨਾ, ਵੋ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਵੋ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਜਬ ਮੁਗਲ ਆਏ आपने नोटिस किया होगा मुगल इन इन एरिया में सबसे ज्यादा है. राजस्थान में बहुत सारे किले हैं जिनमें बहुत सारी कहानियां जुड़ती हैं. यहाँ पे ये मुगल शासक आया था, ये लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई. उस टाइम पे सबसे पहले जब युद्ध होते थे, जब लड़ाइयां होती थी ना, तो वो सबसे जब जीतते थे या जो भी कुछ होता था, उनकी हमेशा नजर होती थी उस परिवार की औरतों पे, महिलाओं पे. तो उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये प्रथा है कि तुम अपना मुंह ढांक के रखो, ना तुम्हारा चेहरा दिखेगा ना कोई ध्यान देगा तुम पर. तो मुंह ढांकना या पर्दा शुरू हुआ. तो मुगलों के डर से, मुगलों से अपनी औरतों को बचाने के लिए सबसे पहले ये शुरू हुआ.
0: मुगल नहीं लेके आए, मुगलों के डर तो हो ये चीज.
1: हाँ, मतलब वही इन्फ्लुएंस तो वही आई ना. मैं वही पे आ रही हूँ कि सबसे पहले जो मुगल आ रही हूँ बीच में ये काड़ी जो कर देते ना.
0: मेरा भी सवाल आवे चे.
1: मुगल कोर्ट जो थे ना, मुगल कोर्ट में सबसे पहले पर्दा स्टार्ट था. वहां पे जो उनकी औरतें थी वो पर्दा लगाती थी. फिर धीरे धीरे जो रॉयल्स परिवार की औरतें थी, उन्होंने अपर हाई क्लास कह रही हूँ मैं, उन्होंने उसे कॉपी किया कि यू फील सेफ. तो उन्होंने ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई के बाद जैसे कि मैंने कहा इन्वेडर्स जो होते थे उनकी हमेशा बुरी नजर रॉयल वुमेन्स पे होती थी. तो रानियों ने, राजपूत रानियों और औरतों ने बुरी नजरों से बचने के लिए अपने आप को छुपाने के लिए घूंघट शुरू कर दिया. फिर आगे चल के वो चीज कैसे बदल गई इस चीज में कि जो रॉयल्स की औरतें हैं, वुमेन्स हैं, उनका एक एटिकेट में आ गया कि हाँ रॉयल्स की औरतें हैं तो वो अपनी शान के में वो घूंघट लेंगी, सिर ढाकेंगी. तो वहां से धीरे धीरे फिर आपको पता है ये चीजें ट्रैवल होती हैं, अपर टू लोअर जाती हैं. तो करते करते वहां की राजस्थान में सारी औरतों ने, सारी बींदनियों ने सिर ढाकना शुरू कर लिया.
0: बींदनियां कुड़ियां होती हैं.
1: हाँ, बींदनियां बहुएं, बेटियां, सारी बहुएं में बेसिकली बहुओं ने सिर ढाकना शुरू कर दिया. तो राजस्थान से ये ट्रैवल होता हुआ बिहार, हरियाणा, यूपी में ये चीज पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई. और आज भी इस प्रथा को ये लोग एज अ कॉस्ट्यूम कह लो, एज अ ट्रेडिशन कह लो, कल्चर कह लो, दे लाइक वो एम्ब्रेस करते हैं उस कल्चर को. बट आप वही देखिए, हम अगर साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में मुगल नहीं आए या बहुत कम नाम मात्र के आए, तो आप देखिए इवन उनकी शादियों में भी ब्राइड भी वो साड़ी पहनती है लेकिन सिर नहीं ढांकती है, क्योंकि वहाँ ये कल्चर था ही नहीं, तो वो नहीं फॉलो करते घूंघट प्रथा. तो ये डेफिनेटली उनके डर से या उनके परिवार की औरतों को देख के कैसे क्या, तो वो हमारी कल्चर, हमारी कम्युनिटी में आया राजस्थानी में, और राजस्थान से होता हुआ हरियाणा, यूपी, बिहार और बहुत सारी जगह पे ये फैल गया घूंघट.
0: ओके,
1: तो ये थी घूंघट की कहानी.
0: नाइस
1: जी.
0: तो वेलो हुण ओ किन्ने वैसे होरना धर्म च भी हैगी चीज
1: जी,
0: पर ओ हुण सिर्फ ओ रिस्पेक्ट.
1: हाँ,
0: या किसे
1: एटिकेट, रिस्पेक्ट. हाँ जी जी
0: जी
1: जी, बिल्कुल.
0: राजस्थान हाले भी टक दे पूरा,
1: बिल्कुल बिल्कुल. वो वहां पे अभी भी और बड़े, मतलब दे एम्ब्रेस इट, मतलब बड़े प्राउड के साथ सिर. एक्चुअली जो राजस्थानी बेस है ना, जो लहंगा चुन्नी होता है, वो बिना सिर ढके ना आप कितना ही, मतलब विशाल जी, बेसिक जो घर में पहनने वाला भी होता है ना, 10,000 से उसकी शुरुआत होती है. आई एम टेलिंग यू, है ना, 10,000 से. जी बिल्कुल बेसिक मैं बात कर रही हूँ, ओढ़नी. मतलब
0: गरीब बंदे फिर कर दे
1: वो उनकी, फिर है ना उनके वो ट्रांसफर होते हैं, जैसे सास हो ऐसे, मतलब. पर मैं, मतलब पता नहीं, मैं जितनों से मिली ना, 10,000 वाला बिल्कुल बेसिक होता है, जैसे अपने प्रिंटेड सूट होते हैं. उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, लाखों में. लेकिन अगर उसके साथ वो लोग सिर नहीं ढांकते ना, वो लुक ही नहीं पूरा होता. तो वो अब उनके कल्चर में या कॉस्ट्यूम में वो आ गया अटायर में कि सिर ढांकना या सिर कवर करना वो है. तो घूंघट की आज हमने बात करी.
0: That's nice. Yeah. बहुत सोहनी गल की थी.
1: Yeah.
0: So, ए सी गल घूंघट दी, जे तुहानू नहीं पता ते अज तुसी जान गए. आपां सुनदे हां एक गीत याशी, ते गीत तो उस पार. तुहाडे कोल पहली गड्डी केड़ी सी? पहली गड्डी केड़ी सी तुहाडे कोल?
1: ओह, उसका तो नाम भी नहीं पता.
0: होल्डन दी, पर होल्डन दा नाम सुनिया तुसी?
1: हां जी हां जी. आई थिंक पता नहीं होल्डन ही थी, कौन सी थी.
0: अज आपां ओदी ही गल करनी. अज आपां आस्ट्रेलिया दा सब तो हरमन प्यारा ब्रांड होल्डन, उसकी आप गल करांगे आफ्टर दिस सॉन्ग. गाना आया जी माई रूट्स, रणजीत बाबा. सुनना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, पेश
0: करें. आ जाइए आ जाइए.
2: चढ़ता दा टाइम गुट्टा उत्ते रोल दिया, चढ़ती कला च मुंडा पा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬੈਗੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰੀਅਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਪ ਗਲੋਬਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ 3 ਕਿਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ $295 ਵਿੱਚ, 22 ਕਿਲੋ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ $310। ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ। ਹੁਣੇ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0406-966-668 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ shipglobal.au।
3: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार। एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
4: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है।
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
8: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचन दा।
9: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
10: इस 8 मई नूं सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
11: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
12: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
13: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
14: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: la más bella señora.
1: Señorita.
2: आप तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए. चलो मैं आपको मेरे ससुराल ले चलूं.
1: अरे क्या बात है.
2: तो ससुराल
1: वो तो ज्यादा टाइम नहीं लगे जाने निपराण होने होने ने कहना होने की कमी था.
2: मैं आपको नाश्ता कराने लेके चलती हूँ.
1: ठीक है, आपके ससुराल का नाश्ता.
2: हाँ जी,
1: क्या बात है. क्या है आपके ससुराल का नेशनल नाश्ता.
2: तो आपको पता है ना कि मैं इंदौर से हूँ, मतलब मेरे ससुराल वाले इंदौर के हैं. मैं तो कोटा से हूँ. मैं तो फिर भी अभी ये बोलती हूँ.
1: नहीं, आप इंदौर से भी हैं, आप कोटा से भी हैं, आप मुंबई से भी हैं, आप डारबिन से भी हैं, अब आप मेलबर्न में भी हैं.
2: मैं तो अपने आप को बंजारन कहती हूँ. आई लव टू ट्रैवल एंड स्टिल ट्रैवलिंग, है ना. तो विशाल जी, जैसे मैंने आपको एक हिंट दे ही दिया है कि हम चल रहे हैं इंदौर की गलियों में. इंदौर की गलियां हैं और 6:30 या 7 बजे से आपको एक अलग सी खुशबू रेडियो पे दिखने लग जाएगी, है ना. जैसे अब कह लो आप पंजाब में निकलो तो छोले कुलचे, छोले भटूरे, दिल्ली में छोले भटूरे, पंजाब में छोले कुलचे, महाराष्ट्र में वड़ा पाव. तो वैसे ही हमारे इंदौरियों का जगत फेमस, जिसको नाम भी इंदौर के साथ टच करके मिलता है, तो हम बात करने जा रहे हैं इंदौरी पोहे की.
1: इंदौरी, मैं तो कला पोहू सुने तो ही नाल इंदौरी का तेला.
2: नहीं अब इवन के
1: जे मैं कहूं मैं तानू गल सुनाऊंगा बटालवी पोहे दी, फिर साडा हो जाऊगा.
2: नहीं नहीं, इवन मतलब वो हो गया कि पोहा इज फ्रॉम इंदौर. लाइक इंदौरी पोहा एक अलग वाइब है ना, क्योंकि
1: कला पोहा पोहा या जेड़ा इंदौरी पोहा वो राजकुमार है.
2: हां,
1: उन्होंने कपड़े पाए सोने.
2: इवन केबीसी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें उन्होंने अकेला पोहा नहीं बोला था, इंदौरी पोहा बोला था. और आपको पता है 7 जून तो पोहा दिवस के रूप में मनाया जाता है. जी,
1: क्या कर रहे हैं इंदौर वाले.
2: तो उस दिन 7 जून को आप देखोगे मेरे स्टेटस पे कि मैंने पोहा बनाया.
1: अच्छा, आप भी नेशनल पोहा डे मनाएंगे.
2: जी, मैं हर
1: पीली साड़ी पहन के
2: मैं हर साल बनाती हूँ अपनी किचन से. तो हम इंदौरी पोहा की हम बात करेंगे. अब आपको पता है कि बनता ये चावल से, अब इसकी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई. एक कहानी तो यह है कि चावल एक बार भीग गए बहुत ज्यादा, वो वेस्ट ना हो, तो उन्हें चावल को मतलब धान को सुखाया गया और फिर उसे कूटा गया, तो फ्लैट हो गए वो, तो उससे वो पोहा बन गया. तो बनता भी इसकी प्रोसेस भी यही होती है. पहले चावल को भिगोया जाता है, फिर उसे फ्लैटन किया जाता है, फिर स्टीम करके रखा जाता है, और फिर वो अलग अलग जगह ट्रैवल हो सकता है. बहुत दिनों तक चलता है. ठीक है, अब बहुत दिनों तक चलता है तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी ये बड़ी आसानी से आप ले जा सकते हो, खराब नहीं होता है. तो और उसके ऊपर टॉपिंग्स डलती हैं अलग अलग तरीके, सेब डालते हैं पोहे में, प्याज डालते हैं, अनार डालते हैं,
1: सब्जियां भी डालती हैं,
2: नींबू डालते हैं. अब तो वो हेल्थी पोहा अलग आ गया. और स्पेशली इंदौरी पोहा को इंदौरी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला होता है, जो चाट मसाले से थोड़ा हटके होता है, उसे बोलते हैं जीरावन. जीरावन,
1: जीरा जरा पाया उन्होंने.
2: अरे वो बहुत ही बेहतर. मैं जब इंदौर गई ना, आई विल गेट इट फॉर यू. या वैसे इंडियन स्टोर पे मिलता है जीरावन.
1: ओके,
2: तो वो जीरावन इज अ वाइब, है ना, इंदौरियों के लिए. तो वो तभी कंप्लीट होता है, और उसके साथ में अकम्प्लिश किया जाता है जलेबी के साथ.
1: जलेबी भाई.
2: तो सबसे फनी चीज ये है कि जिसको हम बड़े शान से बोलते हैं इंदौरी पोहा, इंदौरी पोहा, वो इंदौर का है ही नहीं. वो इंदौर का है ही नहीं. पर इंदौर
1: अभी तो आप इंदौरी पोहा कह रहे हैं.
2: वही मैं बता रही हूँ. इंदौर एक ऐसी जगह है ना विशाल जी, वहाँ कोई जाता है ना. एक बार मैं भी गई थी 11th में पढ़ने.
1: हाँ जी हाँ.
2: नहीं 11th
1: होके रह जाता है.
2: 11th में मैं एक शादी में गई, फिर पढ़ने गई, तो वहीं की होके रह गई
1: मैं. इंदौरी बटर चिकन हो जाता है.
2: हाँ, मतलब इंदौर में अपनापन है, तो पोहे ने वो अपनापन अपना के वो एक्चुअली.
1: हाँ जी,
2: पोहा ओरिजिनल है महाराष्ट्र का. महाराष्ट्रियन पोहा होता है, उसमें वो डालते हैं बहुत सारा कोकोनट, कह लो कड़ी पत्ता और हरी मिर्च. तो वो महाराष्ट्रियन पोहा होता है. जब होलकर और सिंधिया फैमिली जब इंदौर आए ना, जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के रूलर थे, तो वो अपने साथ ना सिर्फ वहाँ का कल्चर लेके आए, बल्कि वहाँ के खाने की रेसिपीज भी लेके आए. अब आपको पता है होलकर और सिंधिया फैमिलीज महाराष्ट्रियन थे, तो महाराष्ट्रियन इन्फ्लुएंस थे. तो वहाँ की चीज़ों में सबसे ज़्यादा फेमस था पोहा. महाराष्ट्रियन अपने साथ खाने की चीजें लेके आए, तो पोहा भी लेके आए. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पोहे में धीरे धीरे चेंजेस, मतलब अलग अलग वर्जन बनने लगे. तो 47 में तो देश आज़ाद हुआ था. 48-49 के टाइम ना पुरुषोत्तम जोशी करके थे इंदौर के, उन्होंने पोहे को बाहर दुकानों पे मतलब अपनी दुकान पे बेचना शुरू किया, या कह लो रेडी लगानी शुरू करी. पहले तो वो रॉयल्स बनाते थे सिंधिया और जो मराठे थे है ना, ये लोग बनाते थे. लेकिन उसके बाद होलकर और सिंधिया. अब अगर इंदौर की बात करें ना, देवी भाई अहिल्या और होलकर फैमिली का है पूरा इंदौर. आज भी वहां पे किला भी है ना, और कॉलेज वगैरह उनके नाम भी होलकर कॉलेज, होलकर सोसाइटी ऐसा. तो सुबह 6 बजे से लेके पोहा मिलना स्टार्ट होता है. हर गली हर कूचे पर पोहे की दुकान लगती है और 10-11 बजे तक अपना समेट के सामान घर निकल जाते हैं, है ना. तो कुकिंग के इसके तो पहले तो तरीके आपको पता है, बेसिक जो होता है वो तो फ्राई वर्जन होता है. फिर इंदौरी जो पोहा होता है उसको वो लोग स्टीम करते हैं.
1: हाँ जी.
2: उसको पका के ना वो नीचे पतीले में पानी रख के वो दिन भर वो स्टीम होके और बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही हल्का होता है, फ्लफी सा टेक्सचर होता है. और इसको जैसे मैंने बताई है जलेबी के साथ अकम्पलिश किया जाता है. कई जगह इसको पीनट्स के साथ सर्व करते हैं, कई जगह इसको मटर के साथ सर्व करते हैं. और महाराष्ट्रीयन पोहा में स्पेसिफिकली डलता है कोकोनट और कड़ी पत्ता. गुजरात का जो पोहा होता है वो मीठा होता है. और यूपी का जो पोहा होता है वो होता है तीखा. और इवन जबलपुर एग्जैक्टली जबलपुर वाली साइड ना विशाल जी, पोहा मिलता है तरी वाला. बहुत ही अलग तरीके का होता है पर बहुत डिलिशियस होता है.
1: तरी ग्रेवी टाइप तरी
2: ग्रेवी वाली है ना, ग्रेवी वाले उसको बोलते हैं उसल या मिसल पोहा कुछ. वो महाराष्ट्र में भी मिलता है. तो स्पाइसी सी ग्रेवी होती है. तो बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा फनी इस चीज में ये लगी थी कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड फेमस बनाया हुआ है पोहा, वो इंदौर का है ही नहीं. वो आया महाराष्ट्र से, पर महाराष्ट्र से ज्यादा क्लेम हुआ वो इंदौर में. और इंदौर से तो आज इवन प्री मिक्स पोहा भी मिलता है, उस पे भी लिखा होता है नाम इंदौरी पोहा. पर मेरी ये टिप है, अगर आपको पोहा घर पे बनाना है, पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, तो इंडियन स्टोर अगर आप जा रहे हो तो वहां पे थिक पोहा चूज करें. अगर आप गलती से भी थिन पोहा ले आए ना, तो वो आप मतलब पंजाबी में कहते हैं लिगड़ हो जाना है सारा,
1: लिगड़
2: ना, उसकी खिचड़ी बन जाएगी, पोहा नहीं बनेगा. पर आप ठीक पोहा लेके आए और अल्टीमेट सा पोहा बनाए, उसे नींबू निचोड़ के.
1: पता मैंने पहले नहीं स्वाद लगता होता है, मैं खा को लेना.
2: अब तो जैसे अपने बात हमने बात करी हेल्दी वर्जन, उसमें यू पुट इट लॉट्स ऑफ वेजीज, गाजर डाल दो, बीन्स डाल दो, मटर डाल दो, कॉर्न्स डाल दो, है ना. ये तो आप हेल्दी वर्जन कर सकते हो. और एक चम्मच तेल में ही बन जाता है आराम से. और उसके बाद अगर आपको हेल्दी वर्जन करना है तो आप इसको जो जैसे चिया पुडिंग बनती है ना, उसको धो के वार्म वाटर से उसमें चिया सीड डाल के, दही डाल के, हल्का सा राई का तड़का लगाओ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है. So, this is poha.
1: Nice.
2: Yeah.
1: पोहे के साथ चाय हो जाए.
2: चाय और पोहा और जलेबी is ultimate.
1: और वो भी हो जाए बर्फ में बैठ के.
2: हाँ,
1: क्योंकि तो बर्फ में बैठ के इसलिए क्योंकि पिछली एरिया पर दस्या सीगा कि 100 साल हो गए माउंट बुलर. एंड अनदर प्लेस इज माउंट बाबा.
2: ओके.
1: बाबा तो लगूगा भी कितन की जगह, पर ओरिजिनल्स वालों दिता गया एक शब्द है जिसका मतलब होंगे ईको, कि गूंज के आनी है आवाज. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ.
2: ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਹਮ ਪਹਾੜੋਂ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਤੋ ਚੀਖਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਫਿਲਮੋਂ ਮੇਂ ਦਿਖਾਤੇ ਵੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਤੀ ਹੈ. ਓਕੇ.
1: ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰਿਜਨਲ ਦਾ. ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਜਿਹੜੇ 1800 ਸਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਟਿੰਬਰ ਸੀਗੀ, ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨੂਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨੂਜ਼ੇ ਟਰੈਸਟਾਈਲ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਰੀ ਰੇਲ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ.
2: ਐਂਡ
1: ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰੇਲ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਇਨ ਇੰਟੈਕਟ. ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਵੈਦਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ, ਘੋੜੇ ਗਧੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿੰਬਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫੋਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਕੀਂਗ ਦੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦੋ ਇਹਨੂੰ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੱਲਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਮਸ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਲਵ ਫਰੋਗਸ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਯਸ਼ੀ। ਯਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬੌ ਬੌ ਫਰੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਵਲੂਮੀ ਪਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੜਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਦਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜਾ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਮਿਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂਜੇ ਪੱਬ ਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਬ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਦਿਖਣੀ, ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਚੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ।
2: ਓਕੇ ਵਾਓ,
1: ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ
2: ਮਾਊਂਟ ਬਾਬਾ।
1: ਬਾਬਾ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਨੇਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2: ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦੂਰ,
1: ਆਪਣਾ 1 hour 45 ਮਿੰਟਸ
2: ਫਰੋਮ
1: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮਾਊਂਟ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ ਸਨੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਬਰੀਜਨਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੋਗਸ ਨੇ, ਟਿੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੰਬਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ।
2: ਓਕੇ
1: ਪਰ ਵਾਈਲਡ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ।
2: ਓਕੇ
1: ਟ੍ਰੈਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੂ। ਐਂਡ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਊਨਸ ਨੇ, ਵਲਹਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਪੈਕਨਮ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੋਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਮਾਨਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਲੱਭ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਡ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡੈਡ ਟਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ
2: ਜੀ।
1: ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਊਂਟ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ
2: ਚ?
1: ਈਕੋ
2: ਜੀ ਸਰ,
1: ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ,
2: 10 ਦੇ ਸੇ 10 10 ਬਟਾ 10।
1: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ।
2: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਪੋਹੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਭਲਾ?
2: ਓਕੇ, ਅਫਗਾਨ ਜਲੇਬੀ।
1: ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ,

ओवर, स्विंग ओवर, हाँ जी हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: अरे जी क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाहर हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, होने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
4: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
5: हे हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
6: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: Hun thode modi nal moda mila ke thodi tarakki di raanu hor vi saukha ate surakhit banaun da vaada karda hai Very Bee Toyota.
5: Jithe hai Toyota di best technology, best customer service ate best Google reviews. Thodi zarurat anusar Pritpal Singh tuhanu help karange thodi apni Toyota choose karan le jo ne ik dahake to Very Bee Toyota de naal.
4: Best deal lai call karo 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: Television is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
0: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: हे हिंदवी स्वराज जवाब है इच्छा।
3: बुक योर टिकट्स नाउ फॉर राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाउस ऑन 1st मई।
4: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
7: नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
4: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
3: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
5: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
6: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: और जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
9: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
10: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
10: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: और जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

खैर इधर अमृता ते इंद्रजीत विच एक गलबात दा सिलसिला शुरू हो गया। असल विच इंद्रजीत किते जदों भी सैवंथ क्लास च पढ़दे हुंदे सी उन्होंने किते अमृता दी फोटो देखी सी ते दसवीं क्लास विच उसका एक नॉवल डॉक्टर देव पढ़िया सी। बस अमृता उसते दिलो दिमाग ते छा गई। उसने इत्थों तक हिम्मत कीती कि कितियों उसका फोन नंबर लभ्या ते फोन डायल कर दिता। जदों अमृता ने उसनू पुछया कि कौन बोलदा तां उसने कहा मैं डॉक्टर देव बोल रहा हाँ ते ए कह के फोन कट दिता। वरे गुजर गए ते रोची खातर इंद्रजीत दिल्ली आ वसे और संजोग नाल उस कलोनी विच रहण आए जिथे अमृता रहिंदी सी ते रेडियो ते काम करदी सी। उन्हां दिनां विच इमरोज दी पूरी धूम सी। उन्हां नूं 1,500 रुपए प्रति महीना मिलदे सन ते अमृता नूं सिर्फ 150 प्रति महीना। अमृता बस रेडियो स्टेशन ते जांदी सी ते इंद्रजीत ने स्कूटर खरीद लिया। अमृता नूं पिछे बैठण लई कहा ते अमृता बिना झिझक बैठ भी गई। इंद्रजीत दसते ने कि जदों अमृता स्कूटर दे पिछे बैठती ते हमेशा अपनी उंगली नाल उन्हां दी पिठ ते कुछ ना कुछ लिखती रहिंदी। बहुत बाद विच पता चलिया कि उह उंगली नाल साहिर लिखती सी। इसे दौरान इंद्रजीत नूं मुंबई तों गुरुदत्ता बुलावा आया। तनखाह भी चंगी सी ते रहण दा प्रबंध भी सी। उन्होंने एक खबर अमृता नूं सुनाई। अमृता लिखती है लग्या जिवें मेरे तो कुछ छुट रहा होवे। एक बार इस मुंबई ने मेरे तो साहिर नूं खो लिया सी ते उही मुंबई दूजी बार। अखां दा पानी संभल नहीं रहा सी। कोई दूसरा ना देख ले इसलिए अखबार उठा के अखां ते हाथ रख लिया। शायद अमृता दी दुआ लग गई सी। तीन ही दिन बीते सन कि मुंबई तो फोन आया इंद्रजीत दा सीगा कि मैं वापस आ रहा हाँ। सारा कुछ वधिया है पर मैनू लगता है कि मैं इत्थे नहीं रह पावांगा ते इंद्रजीत दिल्ली वापस आ गए। क्यों कम ते पैसा तो मुंबई विच ही सी इसलिए उन्हां नू अक्सर ही मुंबई कम दे सिलसिले विच जाना पैंदा। अमृता एकदम इकली हो जांदी। उन्हां दिनां विच ओह चिट्ठियां राही अपनियां धड़कणां एक दूजे कोल भेजिया करदी। उन्हां चिट्ठियां विच इंद्रजीत उन्हां नू कई नामां नाल संबोधित करदी। उन्हां दिनां विच अमृता ने एक खत लिखिया राही तुसी मैनू शाम दे समय क्यों मिले। जिंदगी दा सफर खत्म होने वाला है। जे मिलना ही सी ते दोपहर नू मिल दे। घट्टो घट उस दोपहर दा ताप ता देख लेंदे। ते इंद्रजीत ने जवाब विच लिखिया तुसी खूबसूरत शाम ही सही पर ए ना भुलो कि तुसी ही मेरी सवेर हो तुसी ही मेरी दोपहर हो शाम हो मेरी मंजिल हो ते मेरी किस्मत हो। आखिर ओ कड़ी भी आ गई ते जदों दोवां नूं लग्या कि ओ अलग अलग नहीं रह सकते 8 जनवरी 1964 तो अमृता अते इंद्रजीत इकट्ठे रहन लग पे बिना व्याह किते। हालांकि इस तो पहला अमृता ने इंद्रजीत नूं पुछया भी सी कि देख लो पहला सारी दुनिया देख आओ ते फिर भी वापस मेरे कोल आना चाहो ते फिर मैं उही करांगी जो तुसी कहोगे। इंद्रजीत ने उस कमरे दे 7 चक्कर लाए ते कहा देख ली दुनिया हुण की कहंदे हो। उस वक्त इस रिश्ते दा समाज विच जम के विरोध होया पर उन्होंने परवाह नहीं कीती। उन्होंने तो अपना समाज रचिया सी। ओ अमृता नू स्कूटर ते रेडियो छड्डन जांदे ते शाम नू वापस लैके आंदे ते बाकी सारा दिन बस किते इधर उधर बैठ के पेंटिंग्स बनाउंदे।
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 5,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5,000 ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਮਿਲਾਏ। ਬਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨੀਲੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਇਮਰੋਜ਼, ਇਮਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਕਲਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨਾਗਮਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1956 ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, 1969 ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ।

हां जी आस कर दिया कि तुहानू आज दा प्रोग्राम एक सी अमृता पसंद आया होएगा जे पसंद आया है ते अपने फीडबैक जरूर भेजो ते हुण मैं तुहाडी दोस्त जैस्मिन लनिया इस प्रोग्राम चो इजाजत ते तुसी सुनदे रहो रेडियो हां जी 1674 AM

0: अरे जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: हम थोड़े मोटे नाल मुड्डा मिला के थोड़ी तरक्की दिरानू पूर्वी सौखा अति सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.
6: Mixing in the house.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।
2: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 एएम।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: अखियां सोनी तेरी मेरे

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रव नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आदि गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारो
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्ब निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन ऋषि नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन आही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुत मीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कोट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात गीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन मैं मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साध कै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तुसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को नस जानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तो प्रोघाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भग जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मंत्र रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ नाहे बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पो जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगटनी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम धियाई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरिया
1: अनेक प्रकार की है बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रत्ना
0: शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भांति
1: नहीं तुल राव नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिर चर जीव है महा उदास तपी सरथी वै
1: अगन माए हो प्राण कनक अस है वरदान
0: न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयमत साधन
1: निम्क निम्क कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे
0: हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व गुमान न मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सा रात मन की मैल न तन ते जात
1: देही को वो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे
0: जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध कहा होए काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच
0: बहुत श्यान जों का भाव व्यापै अनक जतन का तृष्णा त्रापै
1: एक अनेक गन्नी बूझै कूट पाव दरगै निसी जै
0: छूट सनाही उब पयाल मोहे व्यापै माया जाल
1: अवर करतु सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिन नीमाने
0: हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए
1: चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै
0: जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सर गावै
1: जे को अपनी शोभा लोरे सा सिंह ए हो मैं छोरे
0: जे को जन मरण ते डारै साजना की शरणी पारै
1: जिस संग को पव दस प्यासा नानक ताकै बल बल जासा
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाकै मिटै बिमान
1: आपस को जो जाना नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना
1: मन अपने ते बुरा मटाना पेखै सगल शिष्ट साजना
0: सुख दुख जन समदृष्टि ता नानक पापों निहले पा
1: निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ
0: निमाने को प्राप्त तेरो मान सगल कटा को दे बहुदान
1: करन करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी
0: अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते
1: तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जानस कोई
0: सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्यम मैं उद्यम भाला हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी
0: सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जी घट बसै हर नाम
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ तीन श्लोक
0: निर्गुण यार ए आनिया सो प्राप्त सदा संभाल जिनकी आतिश चीत रख नानक निभि नाल सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: मैया की गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी
0: जिंतु साठ सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिने उबारिया
1: बार बस्ता तुझे प्यारै दूध पर जोबन भोजन सुख सूद
0: बिरध पया ऊपर साख सैन मुख पयाओ बैठ कौ दैन
1: एहो निर्गुण गुण कुछु न बूझै बख्श देहो तो नानक सीजै
0: जय प्रसाद धार ऊपर सुख बसहै सुत परात मीत बनता संघस है
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला
0: जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा
1: दीने हस्त पाव कर नेत्रसना तिसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ ले हो प्रभ आपे
1: आद अन जो राखन हा तिस्यो प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नम निध पावे तासो मूड़ा मन हिलावे
1: जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगै मान तिसह बसारे मुगद अजान
1: सदा सदा भूलन हार नानक राखन हार अपार
0: रतन त्या कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै
1: जो छना सुअस्त्र करमान जो होवन सो दूर परान
0: छोड़ जाए तिसका शर्म करै संग सहाई तिस पर हारै
1: चंदन ले पुधारै तोए घर तो पीर प्रसम संग होए
0: अंध कूप मैं पतत विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल
1: दूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात
0: बाहर भेख अंतर मल माया छप सनाहे कछ करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लो स्वान
0: अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह
1: जाके अंतर बसे प्रभा अपना तेजन सहज समा
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो उड़न बिहावे
1: कहा बुजात बुजै डोरा निस्किय तो समझे भोरा
0: कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग
1: कहा पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत कुहा उस गवन
0: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै
1: संग सहाय सुवे न चीत जो बहराई ता सो प्रीत
0: बलुआ के ग्रह भीतर वसै आनंद केल माया रंग रसै
1: दृढ़ कर मन है मने प्रतीत काल न आवे मूढ़ चीत
0: वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह
1: यह जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपन कर कर्म
0: ठा कर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी रास
1: मात पिता हम भारत तेरे तुमरी कृपा मैं सुगनेरे
0: कोई न जाने तुमरांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
1: सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी
0: तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चार श्लोक
0: दीन हार प्रभ छोड़ कह लागे आन सुआए नानक कहू न सी जई बिनावे पत जाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण भी खोट गवावे
0: एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे
1: जिस ठाकर सो नाहीं चारा ताको कीजे सद नमस्कारा
0: जाके मन लागा प्राण मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया
0: अगनत साहु अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास
1: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रति तापी खूब है बहुर उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी बस सागे राख है पप की आज्ञा माने माथ है
0: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक पात माया के हे सर पर होवत जान अनेक
0: बिर की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
0: बटाऊ सो जो लावे नेह ताको हाथ ना आवे के हे
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राजु मन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
0: अस्त्र भक्त साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दर कुहरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
1: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम लै
0: बिरथी साक्त की आर जा सच बिना कह होवत सूचा
1: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निरार धाम
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
1: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
0: जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन
1: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन जन प्राता
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै
1: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा
0: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत
1: पावै तिसलै लड़ लाए थान थनंतर रहा समाए
0: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रशर नागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: जय प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे
1: जय प्रसाद वशिष्ठ मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय
0: जय प्रसाद तुर सब को मान मुखता को जस रसन बखाने
1: जय प्रसाद तेरा धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पथ सेती घर जावे
1: जय प्रसाद औरो कंचन देही लिव लाओ तिस नाम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभ ताके
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोय प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
0: सहते आजो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहज बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सहज समावे
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू पट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच
1: जय प्रसाद सब कीत होए नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए
1: शर्म निधान प्रभ तेरी मैया आपो कछु ना किन्हू लया
0: जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साधक संग मुखुजल होत साध संग मल सगली को
0: साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साधक संग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संगे कुपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल है
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग हो सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतु धावे साध संग अस्तित मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन समीर साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिंगा पैर
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजै सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बने आई
0: साधक संग न कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थान उचे साधु के संग महल पहुंचे
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म
0: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल
1: साधक संग कुलूकत हरै साधक संग नरक पर हरै
0: साधक संग इहा उहा सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिठा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक कुदरै साध सुन रसै
1: साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ
0: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है
1: साधक संग लगे पर मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
1: साधक संग मेटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग
0: साध की महिमा भेद न जाने जीता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूच ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्राभेद न पाई
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
1: दम ज्ञानी कह दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप
1: दम ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उच ते उचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अहबुत त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम आठ आठ श्लोक
0: उतार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्श
0: पर तेरे रूप न पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
1: इंद्री जित पाई दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल तर्म
0: काहु फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल भक्त कीर्तन संग राचा है
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अब रह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परमगत पावे
1: भगवती भगवान भक्त का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
0: मन ते बिनसै सगला भर्म कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: सत्संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख मैं जाने स्थूल
0: सोमवार ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन पोए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुकुट पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: आहो जुगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: आत्म नाम तिस नदरी आया दास संतर भाय तिन पाया
0: सदा नित नित हर जान सो दास दरगै प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर है
0: सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक रामदास
1: सब की आ गया तुम हिता वै जीवन मुकुत सो कहा वै
0: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बियोग
1: ऐसा सुन तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताए साई जुगत नानक ओ प्रह कहिया जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राखे तैसा तिनाओ
1: आपे कन करावन जोग प्रभावे सुई फन होग
0: असरे आप हुए अंत रंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश
0: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
0: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नवत नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है
1: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
0: जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरखन पजाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दान विंदर सिर छत्र
1: सुमदरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
1: कई कोट के रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिरजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
1: कई कोट जंक न प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा
0: सब ते नेरा सब हूते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म है जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
1: कई कोट बैठती खाए कई कोट खाले तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत कई कोट कोट माया मह चिंत
1: जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे
0: कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
0: कई कोट दर्शन प्राप्य आस्तिन को मिल्यो प्रभ विनाश
1: कई कोट मा गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको है आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
1: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कई कोट होए अवतार कई जोत कीनो विस्तार
1: कई बार पसरो पसार सदा सदा एक एकंकार
0: कई कोट कीने बहु भात प्रभ ते होए ब्रह्मा हे समात
1: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास
1: कई कोट तत् के बेते सदा निहारे इको नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै
1: कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सहि समावै
0: अपने जन को सास सास समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
1: सुखमनि सुख अमर प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
0: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महियल सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग
0: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
1: हुक्मै तार अतर रहावै हुक्मै उपजै हुक्म सुमावै
0: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार हुक्मै अनक रंग प्रकार
1: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
0: प्रभावै मन गत पावै प्रभावै ता पाथर त्रावै
1: प्रभावै बिन शास्त्री राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै
0: प्रभावै ता पथ तुधारै आप करै आपन बिचारै
1: दोहसरिया का स्वामी खिलै विकसै अंतर जामी
0: जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै
1: कहो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै
0: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे
1: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै
0: परमे भूला देह दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरावै
1: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले
0: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
1: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा दस पलटावै
0: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीश
1: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
0: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
1: इसका बल नाही इस हाथ करम करम सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
1: कबहु ऊंच नीच में बसै कबहु शोक हर खरंग हसै
0: कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु उब काश पयाल
1: कबहु बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार
0: कबहु नृत्य करै बहु भांत कबहु सोए रहै दिन रात
1: कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व कियो त्रवाल
0: कबहु होए बह बड़ राजा कबहु पे खारी नीच का साजा
1: कबहु अप कीर्त में आवै कबहु भला भला कहावै
0: ज्यों प्रभु राखै तिहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
1: कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोहन धारी लावै ध्यान
0: कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कबहु कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
0: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यों प्रा भावै तिवै नचावै
1: ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
0: कबहु साध संगत एहो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते करंग सदा विसै पार ब्रह्म कै संग
1: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान
0: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
1: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
0: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
0: जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
1: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावै
0: धन भूमगा जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै
0: धनवंता होए कर गुरबावै तरण समान कछ संग न जावै
1: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए बिना
0: सब ते आप जानै बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
1: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दरगै परवान
1: कोट कर्म करे हो तारै श्रम पावै सगले बिरथारै
0: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार
1: अनक यत्न करा तुम निद्रवै हर दरगै को कैसे गवै
0: आप सुखौ जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै
1: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जानै मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए
1: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिर
0: जब तारे को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन सुमाए तब लग धर्म रह देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै
1: ऐस कटेला कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै
0: अनक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खप खप मरै
1: बिना संतोख नहीं को राजा स्वप्न मनोत बितै सब काज
0: नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए
1: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव
0: करन करावन ਸਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ
1: ਜੈਸੀ ਦਿਸ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਪੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਅਨੇਕ
0: ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
1: ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ
0: ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾ ਛੁਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
1: ਤੇ ਬਿਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ
0: ਆਪਣੇ ਚਿਲੇ ਤਬ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ
1: ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ
0: ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ
1: ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀ ਨਾ ਕੋਟ ਵਧੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ
0: ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਨੂਪ
1: ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਵਰਨ ਵਖਾਣੀ
0: ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਬਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਕਟੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹੀ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰਖੈ ਨਕੋਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ
1: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਬੀਤਰੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵੈ
1: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਬ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਕਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ
0: ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ
0: ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿੰਟਿਕ ਨ ਪਾਈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਹਰ ਦੀਨ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ
1: ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੋ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਆਪਣ ਬੀਜਾ ਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜੋ ਜਲ ਬਿਹੋਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜੋ ਪਾਵਕ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਕੀਲਾ ਜੋ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਬਹੇਲਾ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ
0: ਕਿਰਤ ਨਿੰਦ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ
0: ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵ ਆਈਐ
1: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਚਲੈ ਨਰਾਸਾ
0: ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ
1: ਪਇਆ ਕਿਰਤਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
0: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਸਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ
0: ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ
1: ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ
0: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨ ਕੀ ਟੇਕ ਵਿਧੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ
0: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਨ ਕਹਿ ਕਛ ਨਾਹੀ ਹਾ
0: ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਡ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
0: ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
0: ਮੈਨੋ ਪਿਵ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੇ ਭਾਵ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
0: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ
1: ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
0: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਇਹ ਤੁਤ ਕੀ ਹੋ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਝੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਤੂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਨਹਿਤ
0: ਆਂਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪਰ ਮਨਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਪਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਤੈਸਾ ਦਿਸਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
0: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਾ ਬੂਝਿਆ
1: ਜਬ ਦੇ ਕੋਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
0: ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਿਸ਼ਟ ਅੰਦਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਕਰ सारी तारी सब सिस्ट
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
1: अविनाशी नाए किच खंड तारन धार रिहु ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल लय कृपाल गुर का सो जप है निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करह बड़ भाग है
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
0: जो किच करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा सह हर संग
1: सह सुबह हो वैसो होए करने हार पछाणै सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिसते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हों बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरिय नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे
1: प्रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभा पे आप
0: आपन की आकछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्व है
0: अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे
1: जे को होए बह दातार तिस दिन हार जाने गवार
0: जिस गुर प्रसा टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखान नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्ता रह
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्या तुत सह चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिर जान
1: कौन बस ताई तेरा संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद सेती कर जाहे
1: जिस्व कर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: तजब मान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतोल
1: लाद खेप संतै संचाल अवर त्या विख्या जंजाल
0: धन धन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए
1: हो वापार बिरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान साध उपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक विगंते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: कोट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया
1: मृतो को जीवा लनहार पुखे को देवत आधार
0: सर्ब निदान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे
1: सब तिस का करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग
0: जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एहे करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए
0: सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दिस सच आयाकार सच वर्ती साचा पासार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ पंद्रह श्लोक
0: रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रापिन तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मान की तू प्रीत त्याग
0: तिसते परे नाही कुछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: सात तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनुराग
0: मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग
1: हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व थोक सुनिए कर ताकै
1: राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तभी सरगस्त मैं भोगी
0: त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया
1: जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे वगाहे
0: पिता का जन्म के जानै पूत सगल परोई अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवै से
0: तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग
1: नाना बितकीनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
0: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ
1: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आगास पताल नाम के धारे सगल आकार
0: नाम के धारे पुरिया सा भवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਮੈ ਸੁਮਾਣੀ
0: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬਜਾਇ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ
0: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
0: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀ ਆ
0: ਬਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
0: ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਗੁਲਾਗੀ
0: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ 816 ਸਲੋਕ
0: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਆਵਨਹਾਰ
1: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
0: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ
1: ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
1: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
0: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ
1: ਬਸਤ ਮੈਂ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾ

0: सेवक की राखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास सुमार है
0: अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर राख है
1: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राख है ताकि गतमित कोई न लाख है
1: प्रभ कह सेवक को न पहुंचे प्रभ कह सेवक ऊंचते ऊंचे
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी में कर राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है
0: जिसका सास न काटते आप ता को राख दे कर हाथ
1: मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव बिरथे जात
0: मारे न राखे अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अलख बडाणी
0: बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तंत्र पिए
1: नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसकिच अबर नाही दिसताया
0: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
1: नाम रस जो जंत तने मन तन नामे नाम समान
0: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
1: लो जाचे वादन प्रभ अपने जन की नींदात
0: करह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने स्यों रह है समाए
1: जो हो आहो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने
0: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो
1: हाथ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से ही जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले हे मन तन अपना तिन जन दे हे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
0: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
0: आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूज हो सद पैरा
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सतारा श्लोक
0: सत पुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिखै बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै
0: सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख भागी हे
1: सतगुरु सिखा हलत पलत सवार है नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमार है
0: गुर कै ग्रह सेवक जो रह है गुर की आज्ञा मन में सह है
1: आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस विश्व गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
0: सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्वन दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता
0: ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कछ परम
1: सहस सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुरुड भागी पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत
1: संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: सुनकर बचन करन आगाने मन संतोखा तुम पतिया ने
1: पूरा गुरु आख्यो जा का मंत्र अमृत दिष्ट पेखे होए संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए
1: जे बाए कुस्तत अनेक सतपुरख पूरन बबे
0: काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर खुदाई ताकि कीमत किने न पाई
0: अनक भक्त बंधन नित कर है चरण कमल हृदय स्मर है
1: सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
0: एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए
1: पुरका नाही कदे विनाश जाके मन पटे गुणतास
0: आठ पहर हर का नाम ले सच उपदे सेव कौ दे
1: मोह माया कै संग न लेप मन मै रख है हर हर एक
0: अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे
1: तब्त माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे
1: पौ चुका निर्भय होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे
0: जिसका सातन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चूके भउ गवन सुन नानक हर हाज जस सवन
0: निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही
1: अपने चित बाबा बनाए अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए
1: पोत पोत्र व्या रूप रंग पै प्रगाश साध कै संग
0: रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठारह श्लोक
0: साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमाव ना नानक हो तन सार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार
0: अवरो पासा मीत बिसार हो चरण कमल रिद मै उतार हो
1: करम कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर रथ
0: एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
1: एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे
1: जिस को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत
0: जे शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी
1: अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए
0: सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान
1: मन पर बोधो हर के नाए दर्द स्तावत आवे ठाए
0: ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसै हर सोए
1: काल ताती ठंड ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Werribee Toyota, the smart choice.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसे लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती हैं। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं।
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है नहीं, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने। ये मोटे मोटे तौर पर है, अगर हम सूक्ष्म
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है, आज कहीं है नहीं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है, भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइटिंग। व्हेन आई हैड सिमिलर थिंग आई वाज स्मॉल, तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा तो इसके बारे में सोचने लगा तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाए तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाए जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात न हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, हाँ, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिस्टर शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं। हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आ गया वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बार बार जब अब वो हमने कर्म किया तो वो एक संस्कार बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि हम इतनी बार वो कर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाता है कि इंटेलेक्ट उस पर अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है। तो इट्स लाइक अ गेट जिसको हम बाईपास कर जाते हैं कि थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उस पर अपना डिसीशन नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया। तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा, तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया। एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया, तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है,
3: विशेष करके जिसे हम कहते हैं जहां कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल पावर
1: शिवानी बनकर शी माइट ऑल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते हैं, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते हैं कि यही करो, जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश
3: करेंगे,
1: चॉकलेट
3: चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही तो भी याद आएगी,
1: तब भी याद आएगी, और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया है चॉकलेट्स का, उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है,
3: एंड देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट।
1: हाँ, इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की, बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है कि जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो भले मेरा वेट बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा, परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहती नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी कि अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा कुमारीज में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल, अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती हैं, अगर और डीप में जाएं तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इनटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शन है। आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकती हैं।
1: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं, वह है चाय कॉफी। आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलना है कि उसके फायदे हैं, टीज के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे, बट मैं सोचता हूँ कि भी थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है, जो रिसर्च आ रही है ना अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है,
0: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है। बिल्कुल,
1: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट, उसकी आदत होती है।
0: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं, चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं,
1: और अगर नहीं मिला तो
0: सर में दर्द,
1: हाँ एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, एक स्पिंक्टर होता है इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं, आज बच्चों में भी। गुटखा सिंपल चीज नहीं है, आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन हो।
0: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी, मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देर इज अ हेडेक, तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में
1: ही? बिल्कुल, दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दिस इज एडिक्शन। इनफैक्ट सिर्फ इंटरनेट का ही, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी।
0: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूं कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है? हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
2: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
3: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल,
2: नहीं इवन इंटरनली यू नो वो खींचती है वो चीज मुझे, फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना, तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर न कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खिंचता जाएगा, सो आई कम टू नो यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड मेरे को लगता है सब
4: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई और फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई, एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा और होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाने लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

उस परमेश्वर नूं याद करदा है। कोई राम कहिंदा है, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई गोबिंद, कोई माधु, कोई मुरारी। इस सारा संसार उस परमात्मा नूं याद करदा है, पर फिर भी वह सारयां दे वस विच नहीं आंदा, सब नूं मिलदा नहीं। इहदा इह मतलब नहीं जिहड़ा राम राम कहिंदा है, जिहड़ा वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह कहिंदा है, उहनां नूं रब मिलदा नहीं। मिलदा है,

ते बड़ी मुश्किल एक किनारे लगे और गुस्से विच कहन लगे ए गुजरी ए सुसरी आप ते चली गई मैनू डुबण वास्ते छड़ गई पर सा संगत।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 1674.

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

स्वागत है दोस्तों तुहाडा अज दी कहानी अज दे विचार दे विच। अज दी कहानी उन्हां कम्मां दी गल करदी जिहड़े आपां हमेशा कल परसों ते पा दिंदे, कोई ना देखी जाऊगी, ये कल नूं कर लांगे, ये परसों नूं कर लांगे। वो शायद काम इन्ना जरूरी भी नहीं हुंदा, तां करके तुसीं अग्गे पाया हुंदा। पर जिहड़ी दिमाग वाली लिस्ट है ना, उन्हें हमेशा उत्ते ही रख्या हुंदा, प्रायोरिटी दी। इदां ही अज दी कहानी है एक साधु दी, एक स्टूडेंट दी। दसदे ने एक चेला अपने गुरु दे नाल आश्रम दे विच रहिंदा सीगा। चेला कहिंदे बड़ा आलसी सीगा, ओह अज दा काम कल ते, कल दा परसों ते, इदां करके वह टालदा रहिंदा काफी काम। इसे आदत करके उहदे सारे काम हौली हौली या कह लो देरी नाल पूरे हुंदे। फिर वह पछताउंदा रहिंदा। जिहड़ा गुरु सी वह इस आदत तो जाणू सी, चिंतित भी सी। एक दिन गुरु ने सोचा कि इसनू सबक जरूर दिता जाए। हुण गुरुकुल दा समा उत्थे तरीके ही वक् वक् हुंदे सन। गुरु ने चेले नू अपने कोल बुलाया ते एक काला पत्थर दिता ते क्या पत्थर रख ला तू अपने कोल, मैं दो दिनां लई बाहर शहर चलिया किसे काम वास्ते। पर ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, ये बड़ा तलिस्मी पत्थर है, जादुई पत्थर कह लो। इस पत्थर की खासियत है कि जे किसे लोहे नाल रगड़ेगा ना इनू, ये सोना बन जू। मैं काला पत्थर तेनू दे रहा, इहदे नाल तू जिन्ना सोना बनाउणा हो बना ली, पर मैं कल शाम तक वापस आ जाणा, उदों तक तू इहनूं रख सकदा। जदों तक मैं वापस नहीं आउंदा उदों तक ते पत्थर तेरा, पर कल शाम नूं तेनूं इह पत्थर मैनूं वापस करना पऊगा। गुरु तां चलिया गया। हुण जिहदे कोल पत्थर आया करन नूं तां की नहीं कर सकता सी, पर सीगा आलसी। सोचणी लग गया, कहिंदा वी हुण स्टोन तां आ गया, वो पत्थर तां आ गया, जिन्ना मर्जी सोना बनाई जावांगे। फिर बह के हिसाब जिहा लाउंदा वी कल शामा तक दा ते समा ही समा आ, बड़ा सोना बन जू। फिर सोचण लग जांदा कि इन्ना सोना मैं बनाऊंगा किदां। सोचता कि किसी मार्केट जाके कबाड़ी कोलों मैं लोहा लै लूंगा, उन्हूं फिर सोने च बदल लांगे। इदां सोचदा सोचदा उहदा सारा दिन लंघ जांदा। शामां हुंदियां ने सोचदा कि हुण की ही मैं मार्केट जाऊंगा, शहर नूं जाऊंगा, दिन ते ढल गया। वो अपना रात दा भोजन छकदा, फिर उन्हां ही सोचां सपनियां च गवा जांदा ते सौं जांदा। सवेरे उठ तां जल्दी जांदा, पर फिर इहो सोचदा कि शाम तक दा समां हले वी हैगा, पहलो नाश्ता करदे आं फिर बाजार जावांगे, फिर सोना ही सोना। पर गल ये बनती कि नाश्ता करन तो बाद फिर उन्हूं नींद आ जांदी। सोचता थोड़ा सुस्ता लिए, गर्मियां दे दिन ने, हमें कित्थे मैं धुप्पा खज्जल हुंदा जाऊंगा, खराब हुंदा जाऊंगा, कोई ना थोड़ा सौने आ, शाम पई हले, दोपहर नूं उठूंगा, फिर बाजार जावांगे, आराम नाल लोहा खरीदांगे ते सोना ते झट ही बन जाणा। सोचदिआं सोचदिआं फिर सौं गया।
ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰੰਤ ਥਾਪੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਬਥੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਰਗਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਉਹ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਟੀ ਨੂੰ ਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

0: डिनर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हम दो दो लोकेशन पे मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टर्न विच वी, तुहाडी सेवा विच।
3: लादे फेरे।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए।
4: मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
6: इस 8 मई नू सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674
3: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
4: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
5: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींचीचा।
1: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May. Haan ji, haan ji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।